आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

शिव मंदिर है। कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: जान जा। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like किशोर but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling.

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छ छम छ छम। एक गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है। एक गर्ल तुम काहे को इनकार करता।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: करती हूँ।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: नाना
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: है जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया किस लिए?
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है।
0: पूछिए देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, नैना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुरा बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत जात, अरे आया आया आया आया। चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार,
2: अपने ही जाल
1: मेरे मन के द्वार
2: फंसत जात,
1: ये घुसत जात,
2: हम हंसत जात,
1: हम मरत जात, मरत जात, मरत जात।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूडी चॉइस आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से। आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूडी चॉइस और कीजिए दिए गए मूड पर आधारित गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉट स्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्कार नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज स्टार अंतरा मस्ती का मस्ती भरा शो। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने हैं।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बनाने सोचा कि आज क्यों ना इन गजलों से स्टार्ट किया जाए प्रोग्राम का। फिलहाल बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करें। सबसे पहले हमारे यानी कि सरफराज जी यानी सरफू भाई जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और बर्जू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बर्जू जी आपका भी। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं विष्णु चंद्र जी। साथ ही साथ जुड़ने वाले दोस्तों में है आरिफ सिंधी जी, वेलकम करते हैं आपका भी आरिफ सिंधी जी। और ज्योति खटवड़े जी वेलकम करते हैं आपका भी। और राजेश कुमार जी वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ निशांत राय बोले जी और सर्वजीत सेठी जी आप सभी का भी वेलकम है। और चलते हैं अब इन व्हाट्सएप पे, क्योंकि प्रोग्राम का आज का जो भी लेना है वो तो इन व्हाट्सएप से ही लेना पड़ेगा मुझे। तो व्हाट्सएप में शामिल होने वाले हमें सबसे पहले हैं सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, एक साहब और हैं नाम तो मुझे नहीं पता है, शायद रमेश चौहान जी हैं। बहुत बहुत वेलकम है रमेश चौहान जी। और यानी कि पूजा भास्कर जी हैं, साथ ही साथ यानी प्रियंका जी हैं, और निशांत राय बोले जी हैं, काजल झक्काश जी हैं, संगीता अम्बुलकर जी हैं, और हमारे यानी कि गजानन सुरकार जी हैं, और बर्जू जी हैं, एम ताहिर जी हैं, मतलब जो भी दोस्त सुन रहे हैं सभी का वेलकम वेलकम वेलकम है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक और गजलों के साथ। ये भी गजल मुझे बहुत ही पसंद है, तो इस गजल से होगा आज का अंतरा मस्ती का आगाज। इंजॉय द ट्रैक।

और यहाँ से शुरू हो रहा है आज का अंताक्षरी। तो सबसे पहला मैसेज मुझे भेजिए 9135841232 पे इन अंतरे में आए शब्दों से गाने चुनकर। जो भी इस अंतरे में शब्द आएंगे उनमें से कोई भी गाना आपको याद होगा आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप करना है सिर्फ।

पे मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है आरजे सोनी जी का। ओह माय गॉड, सच में इंडिया गाना था तो जाहिर सी बात है। और आरजे सोनी जी के पास है ज्योति खटवटे जी का है, और गजानंद जी का है, संगीता मुर्गा जी का है, ताहिर जी का, विष्णु चरण जी का, सरजीत जी का, परवेश जी का, मनीषा जी का, सर्वेश भगत जी का, रेजेश जी का, निशांत जयपुरी जी का।

0: बिल्कुल, अगर अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, कौन लगाते हैं आरजे सोनी जी को? आरजे सोनी जी आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती के सबसे पहला नंबर आपका लगा है, क्या बात है, छक्का लगा दिया एक ही बॉल पर।
1: हाँ, फोन उठाए और फोन रेडी रखे थे मैसेज करने के लिए।
0: अच्छा जी, इसीलिए एक नंबर लग गया आपका, क्या बात है, बहुत बहुत आपको बधाई हो आज के फर्स्ट विनर बनने के लिए, चूंकि सबसे पहला आप ही का नंबर लग रहा है इसीलिए, है ना?
1: तो अच्छा है, और धन्यवाद आपका भी कि आप मेरा मैसेज आज देख लिए पहले।
0: वेलकम है, वेलकम वेलकम।
1: कई बार मिस कर देते हैं।
0: जी जी, वो मैं क्या करूँ, कभी कभी यानी गलती से मिस्टेक हो जाता है ना। इसीलिए तो बता दीजिए, सबसे पहले आप अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं?
1: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे।
0: बिल्कुल, जमाना छोड़ देंगे। इंजॉय। लेकिन आप गुनगुनाती तो और अच्छा लगता सच में।
1: नहीं अभी नहीं।
0: अच्छा, अभी नहीं, फिलहाल इंजॉय कीजिए गाने को। ओके

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतराय। इस अंतर में आए जो भी शब्द आप सुनेंगे, उन शब्दों में से जो गाना आपको याद आएगा वो आप मुझे लिखकर भेजेंगे 9135841232 पे, यानी 9135844 पे, सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको।

बोल, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, और जो तुम एक बार मना कर दो। अब क्या यानी मजाल है कि मैं वो काम करूं? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फिलहाल मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे ज्योति खटवड़े जी का, आरजे सोनी जी का, और सुनीता गोप जी है, अच्छा जी, और सुनील कुमार

0: खा लेंगे।
1: बहुत बहुत वेलकम है ज्योति खटवड़े जी। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, हमेशा तो फर्स्ट आती हैं, आज तो सेकंड आ गई, कोई बात नहीं। होता है, होता है,
2: हो जाता है
1: जी, बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब यानी मिली सेकंड का अंतर होता है कि नहीं? आपसे पहले उनका आ गया, जैसे उनका है तैसे आपका भी आया, मतलब एक ही साथ। हाँ
2: तो बता,
1: हाँ हाँ बता दीजिए। हाँ,
2: तेरे लिए हम
1: जी, तेरे लिए हम हैं जी। ओके, एंजॉय कीजिए, खाना प्ले कर।

बिल्कुल तेरे लिए। वैसे मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है मिसाल अंगद जी का, ओके। और मिसाल अंगद जी के बाद हमारे ये सुनील कुमार जी हैं, ज्योति खरवड़ जी हैं, गजन असलकार जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, संगीता अमरकर जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, बीरबल भगेल जी हैं, और विष्णु चंद्र जी हैं, बरजू जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, विभूति भूषण जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, काजल झक्का जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, निशान राय बोले जी हैं, एम इन ताहिर जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। सीधे कॉल लगाते हैं मिसाल अंगद जी को।

0: मिसाल अंगद जी कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे। नमस्कार नमस्कार अमन सर जी, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है आपसे।
0: जी जी जी नमस्कार।
1: और बताइए। बहुत बहुत दिन की बात हो रही है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और मैं खेल भी बहुत अच्छा रहा हूँ, तो मुझे लगा नहीं था कि वो मेरा नंबर आएगा, लेकिन किस्मत से साथ दिया और मेरा नंबर आ गया। गाना झट से याद आ गया,
0: आपका
1: गाना झट से याद आ गया मुझे।
0: जी झट से गाना भी याद आ गया और आपने झट से भेज भी दिया है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फास्ट भेजा है क्योंकि गाना ही इतना अच्छा था और गाना एकदम 90s का एकदम सुपरहिट गाना था, इसलिए मुझे जल्दी याद आ गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए वो कौन सा गाना है जिसे आपने भेजा है?
1: वो जो ये आप सब शिवदासनी की फिल्म है कसूर, इस फिल्म का गाना है, जो मेरे रूह को चैन दे प्यार जे जिंदगी बन गए हो तुम।
0: सच में एंजॉय कीजिए, जिंदगी बन गए हो।
1: धन्यवाद।
0: ओके।

मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है हमारे यानी सुनील कुमार जी का, उसके बाद हमारे गजन सुनकार जी हैं, एंड यहाँ पे सुनीता गोप जी हैं, और हमारे उपेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर जी आपका। बीरबल बघेल जी हैं, ज्योति खटवड़ जी हैं, और काजल झक्का जी, अच्छा ओके, और यहाँ पे विभूति भूषण जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, मिशाल अंगर जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, और सर्वेश भगत जी हैं, सर्वजीत सैदी जी हैं, परवेश कुमार जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, और विष्णु चंद्र जी हैं, एम इन तहिर जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, साथ साथ संगीता मुलकर जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। थैंक यू सो मच।

0: जी अमन भैया नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतराम मस्ती में। कैसे हैं सुनील कुमार जी, बिहार वाले?
0: जी बहुत अच्छे हैं अमन भैया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं, एकदम झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास, मजे में चकाचक क्रांति के साथ।
0: जी जी जी जी जी।
1: और बताइए आज क्या कर रहे हैं आप?
0: आज अभी काम के साथ साथ आपको एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम को।
1: धन्यवाद धन्यवाद, बस ऐसे ही आप लोग प्रोग्राम को आप सुनते रहिए और दोस्तों को जोड़ते रहिए, यही कहूँगा।
0: जी जी जी जी जी जी, वो तो पहला काम है जी वो।
1: धन्यवाद देते हैं। जी फिलहाल बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
0: जी मैं लाया हूँ किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम,
1: मेरा
0: और गाना। ये गाना जी हाँ, ये गाना एमडी ताहिर जी को हम डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत माहिर हैं और हम सब लगे हैं उनको मिलाने के लिए। माना अब ज्यादा तो नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि सब जानते हैं।
1: अच्छा, नहीं नहीं आप मतलब
0: जी जी
1: आप बोल सकते हैं बिल्कुल
0: जी।
1: हाँ बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम
0: बोल। जी जी कुछ प्रेम कहानी चल रही है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी इनका क्या कहते हैं, जब कोई शिद्दत से किसी को चाहता है
1: तो हमको तो मालूम ही नहीं
0: तो
1: है।
0: पूरी पूरी
1: ये कैसी
0: जी जी पूरी कायनात
1: जैसे मुझे भी बताया जाए।
0: जी तो शिद्दत से जब किसी को कोई चाहता है तो पूरी कायनात लग जाती है उनको मिलाने के लिए।
1: सही कहा आपने। हाँ
0: जी जी जी, तो उनको ये डेडिकेट रहेगा हमारी तरफ से एमडी ताहिर जी को, बड़े जी भैया को, और सब हमारे दोस्त हैं ही है, जुड़े हुए हैं तो उनको तम वगैरह सब हैं जी इसमें।
1: तो पहले वो तो मुझे बताइए वो यानी प्रेम कहानी मतलब कहाँ चल रही है भाई, मुझे पता ही नहीं है।
0: बताएंगे बताएंगे कल बताएंगे सर। अच्छा, अभी तो प्रोग्राम चल रहा है, लंबा हो जाएगा।
1: ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।

0: हो तुम।
1: और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। अंतरा में शब्द से आप मुझे गाने लिख कर भेज सकते हैं 9135841232 9135841232।
2: क्या गाना है।

0: मैं तो भूल ही गया था कि मुझे फोन भी करना है यार। किसका मेरे पास मैसेज? सबसे पहले है ज्योति खरवड़ जी का, गजानंद जी का बा, और यानी कि विभूति जी का, संगीता मुरकर जी का, सरोजी शेट्टी जी का, आरजे आकांक्षा जी का, और ओके और यहाँ पे सुनीता गोप जी का, दीपक जी का, सुनील कुमार जी का, और परवेश कुमार जी का, परजू जी का, सर्वेश भागा जी का, निशांत राय बोले जी का, अजय भागा जी का, और विष्णु चंद्र जी का, नीतू चंद्र जी का, काजल झक्का जी का, नंदनी माँ जी का, एम ताहिर जी का, और भी बहुत से दोस्त है। फिलहाल मैं कॉल लगाता हूँ ज्योति खटवड़े जी को, सबसे पहले भेजा है उन्होंने। बहुत बहुत एक बार फिर से वेलकम है ज्योति खटवड़े जी, आपने बाजी मार लिया। और कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट, झक्कास, बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में, चकचक, ग्रांटी के साथ है।
1: तो होना ही हमारे लिए आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, तो इस बार अंतरे के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई है?
1: वो जब तक रहे तन्मय जिया
0: है, बहुत ही प्यारा गाना है, सच में मजा आता है सुनकर। इंजॉय कीजिए, सुनवा दिए समाधि।

और बहुत से दोस्त ये करते हैं कि जो पहला वर्ड होता है अंतरा का उसी से भेजते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उस अंतरे में जो भी शब्द आए, अंदर में जो भी शब्द आए, उन शब्दों से गाने भेजने हैं। ये नहीं कि जो पहला शब्द है आप उसी से गाना भेजेंगे, नहीं नहीं, उसमें जो भी शब्द है उस यानी कि अंतरे में, पूरे अंतरे में जो भी शब्द है उनमें से आपको गाना भेजना होता है। ओके, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। और इस बार सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है आरजे आकांक्षा जी का, और उनके बाद यानी कि सुनील कुमार जी, ज्योति खटवड़ जी, सुनीता गोप जी है, पूजा भास्कर जी है, और सतीश यानी कि शर्मा जी है, दीपक कुमार गायकवाड़ जी है, राजेश कुमार जी है, राकेश शर्मा जी है, विभूति भूषण जी है, गजानंद जी है, परवेश कुमार जी है, सब एस भगत जी हैं, अक्टिपुर जी और अशोक देशमुख जी और नीतू जी, सरोजी शर्मा जी, संजय साहनी जी, अजय भगत जी, मतलब बहुत दोस्त।

0: आरजे आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। अहो भाग हमारे, आप भी खेल रही हैं और आप नंबर भी लग गया आपका, क्या बात है। और कैसी हैं आप?
1: बहुत सुकून में।
0: वो तो अच्छी बात है, आप हमेशा ऐसे ही सुकून में रही एकदम।
1: इसका रीजन है
0: बता दीजिए। अभी
1: मछली और हंस और पानी, चारों तरफ चलती हुई शाम, और कहीं हम थम के खड़े हैं और इसी नजारे का लुत्फ उठाएं।
0: ओहो, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा। जब आप काम कीजिए, इन मछलियों को कुछ दाना पानी भी दे दीजिए प्लीज, अच्छा रहेगा।
1: नहीं, दाना पानी तो है, लेकिन हमारे पंडित जी भी आए नहीं, उनसे हमारी नाराजगी चल रही है फिलहाल।
0: अच्छा,
1: तो हाँ बस हम अकेले ही हैं और बस सुकून भरी हवा चल रही है और बस अच्छा सा फील कर रहे हैं, गाने सुन रहे थे बस।
0: तो इस यानी कि सुकून भरी शाम में हम सबको भी इन सुकून देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।
1: शुक्रिया आपका भी।
0: फिलहाल बता दीजिए
1: गाने की डिमांड।
0: हाँ, अंत के शब्द से कौन सा गाना आपने चुना है वो बताइए।
1: जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। तो आप सभी को डेडिकेट है, खासकर आजकल जो मोहब्बत परवान चल रही है उसके लिए, और जो लड़ाई चल रही है भाई, वो हाल दिल से लिखना है, लेकिन उनकी नजरों से लिखेंगे जब आएंगे।
0: अच्छा अच्छा।
1: और बाकी आपको तो स्पेशली है।
0: थैंक यू सो मच।
1: और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एंजॉय कीजिए इस गाने को।

यहाँ से शुरू हो रहा है अंतराल। इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे व्हाट्सएप करना है सिर्फ।

खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, और सबसे पहले मैसेज आया हुआ है इस बार धनेश कुमार मिश्रा जी का दिल्ली से, और इनके बाद आया हुआ है हमारे संजय साहनी जी का, पीपू राय जी का, सुनील कुमार जी का, सोनू गौतम जी का, यानी कि विभूति भूषण जी का, सरिता क्या नाम है इनका, सुनीता गोप जी का, और राधा कृष्ण गोप जी का, और सोनम जी का, और राजेश गौतम जी का, नीतू सहन जी का, और सर्वेश भागा जी का, परवेश कुमार जी का, अशोक देशमुख जी का, अब्दुल जब्बार जी का, ज्योति खटवर जी का, निशांत राय बोले जी का, अजय भागा जी का, गजानन सुलकार जी का, विष्णु चंद्र जी का, संगीता मुरुगा जी का, विजय जी का, मतलब बहुत से दोस्तों का। ओ माय गॉड, एक और छूट गया।

0: बहुत बहुत वेलकम है धनेश मिश्रा जी, कैसे हैं?
1: ठीक है अमन भैया, अपना सुनाइए।
0: अरे हम तो बहुत ही अच्छा है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम तो ठीक है, अपना सुनाइए।
0: अरे हम एकदम झक्कास बिना फर्स्ट क्लास मजे में, चकाचक एकदम स्मार्ट है।
1: तो हम भी सोच सुन रहे हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैसेज नहीं कर रहा हूँ।
0: तो कोई बात नहीं, फिलहाल आपका मैसेज आ गया मुझे इन मेरे पास, इसलिए बहुत बहुत आपका वेलकम है। और बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं आप?
1: ये कोई एक गाना है ना कागज कलम दवात का, वही सुना दीजिए।
0: बिल्कुल मैं वही सुनाने वाला भी हूँ। और मैं बता दूं एम इन ताहिर साहब जी, आप एक बार रेडियो को स्टेप करके फिर से इन्हें प्ले कीजिए, क्योंकि आपका आप इन्हें लेट से सुन रहे हैं इसलिए आपका मैसेज लेट से आ रहा है।

मैं कौन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना मैं। इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज एक बार फिर से आरजे सोनी जी का आया हुआ है, और आरजे सोनी जी के बाद है हमारे यानी कि सुनील कुमार जी, सोनू गौतम जी और पूजा भास्कर जी, और यहाँ पे यानी कि परवेश कुमार जी हैं, और हमारे यानी कि संजय साहनी जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, ईश्वर लाल जी हैं, ज्योति खटवाड़े जी हैं, सुनीता गोग जी, अजय भगत जी हैं, राधा कृष्ण गोग जी, निशांत रायपुर जी, उपेंद्र यादव जी, सर्वेश भगत जी, मोहम्मद क्या नाम है मोहम्मद अली जी नहीं मोहम्मद यानी कि शाकिर जी हैं, और यानी बर्जेश क्या नाम है ये बागेश्वर निषाद जी हैं, और सतीश शर्मा जी, पीपू राय जी हैं, गजेंद्र सरकार जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, एम ताहिर जी हैं, और नीतू शरण जी, आफ्ताब जी हैं, धनेश मिश्रा जी हैं, काजल झक्का जी हैं, मतलब माई गॉड बहुत से दोस्त हैं। कॉल लगाते हैं सीधे।

0: वेलकम वेलकम वेलकम बैक एक बार फिर से आरजे सोनी जी।
1: धन्यवाद।
0: और क्या बात है जी,
1: आवाज जा रही है?
0: बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छी वाली।
1: चलिए बढ़िया है, क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ ना, इसके लिए।
0: अच्छा अच्छा, तो बाहर भी आ जाइए।
1: आ गए अभी बाहर, आ गए क्योंकि बात नहीं होती है रूम में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही किया, थैंक यू सो मच बाहर आने के लिए, इतना इन कष्ट उठाने के लिए।
1: कोई नहीं, आप भी तो कष्ट उठा रहे हैं हम लोग के लिए।
0: नहीं ऐसी बात नहीं, हम तो इंटरटेन करते हैं ना आप लोग का। बिल्कुल, तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई है इस बार? ये दूसरा कॉल है आपका। हेलो,
1: क्या?
0: हाँ ये बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई है इस बार? ये दूसरा कॉल है आपका।
1: जी हाँ, तू तू है वही।
0: गाती तो और अच्छा लगता है, फिलहाल गाना प्ले कर रहे हैं, इंजॉय कीजिए।
1: आज गाने को
0: ओके, कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे। फिलहाल सबसे पहले मेरे पास जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो संजय साहनी जी का है, सोनू गौतम जी का है, सुनील कुमार जी का है, ईश्वर लाल जी का, सतीश शर्मा जी का, अनिल कुमार जी का है, ज्योति खरवाल जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, एम ताहिर जी का और प्रवेश कुमार जी का, अजय भगत जी का, अशोक देशमुख जी का, सुरेश भगत जी का, सुनीता गोप जी का, मोहम्मद शाकिर जी का, प्रिकुराय जी का, निशांत दायबड़ जी का, बागेश्वर निशान जी का, गजानंद सरकार जी का, विष्णु चंद्र जी का, मतलब माय गॉड।

0: बहुत बहुत वेलकम है संजय साहनी साहब, कैसे हैं? हेलो
1: सर, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी जी अभी तो ठीक है सर, क्या करें, हम लोग का थोड़ा वर्क ही अभी थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, इंगेज ज्यादा रहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब का 9 to 12 का भी मतलब चल रहा है।
0: अच्छा जी, आप तो हमेशा वहाँ अवार्ड पाते रहते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ आपका डीबी में कोई और अवार्ड आपको मिल रहा है, क्या बात है?
1: ना ना अवार्ड यहाँ कहाँ है सर, हम तो अपना फ्री में बात कर रहे हैं अलग हट के।
0: नहीं नहीं नहीं, हमेशा आपको मतलब यानी कि अवार्ड मिलते रहता है, आपका डीपी में दिख रहा है आपको, फिर कोई कुछ दे रहा है?
1: जी, वो डीपी में देख रहे थे वो सर, गुरु समान समारोह इस बार भी मतलब इस बार भी हमको चुना गया था सर, वो तो जिला स्तरीय से उसमें हमको वह सम्मानित किया।
0: आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई, इतना बड़ा सम्मान मिला है आपको।
1: जी, धन्यवाद।
0: तो जाहिर सी बात है कि भाई आप कुछ वहाँ पे अच्छे काम कर रहे होंगे, तो इसीलिए आपको भाई ये सम्मान दिया गया है आपको, मैं तब से भी बहुत बहुत बधाई हो।
1: जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, चूंकि सर जिस सेवा में मैं कार्य कर रहा हूँ सर, उसके लिए समर्पित भाव से लगातार 2006 से सर मैं कार्य कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: तो जी इस विभाग में मैं लगातार हूँ, जिसके लिए कि मुझे ये सम्मान दिया गया है सर, लगातार है, दूसरी बार 25 में भी मुझे दिया गया था, और अभी 26 में भी इस बार भी मुझे।
0: वाह, अब यानी कोशिश कीजिए कि 27 में भी आदमी को मिला, हैट्रिक लग जाए।
1: जी
0: है ना?
1: जी आप लोग का मतलब आती है सर, आशीर्वाद शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, और हम तो जाएंगे भाई, आप यानी कि 27 का भी मुझे ये ला कर दिखाइए, हम कहेंगे हैट्रिक लग जाए, कम से कम हैट्रिक लगना जरूरी है।
1: जी सर, ओके
0: और मैं भी कोशिश करूंगा कि हमको भी कोई सामान वामान मिल जाए भाई।
1: नहीं सर,
0: है कि नहीं,
1: मान के बिल्कुल हकदार हैं सर, आप इतने लोगों का सम्मान मतलब इंटरटेन करते रहते हैं, और लोग बेसब्री से आपका आवाज सुनने के लिए मतलब सर इंतजार करते रहते हैं, इससे बड़ा आपके लिए उपलब्धि क्या होगी?
0: धन्यवाद देते हैं, बस ये आप लोग का
1: सबसे
0: प्यार
1: बड़ा उपलब्धि है सर,
0: ये आप लोग का प्यार है।
1: जी।
0: तो बताइए सर, जी, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन गलाए हैं आप?
1: ये सर है कि आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: थैंक यू।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहला किनका मैसेज है? हमारे सोनू गौतम जी का, सुनील कुमार जी का, ज्योति खड़वड़े जी का, अजय कुछ जी का, गजानन सुलकार जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, सुनीता गोप जी का, संजय सानी जी का, एम ताहिर जी का और परवेश कुमार जी का, सर्वेश भगत जी का, भगेशन निशा जी का, अजय भगत जी का, नीतू सोन जी का, परवेश अहमद जी का, निशान रायपुरी जी का, अनिल कुमार जी का, विष्णु चंद्र जी का, पीपुरा जी का, कमल शंकर जी का और शिल्पा बेन जी जुड़ चुकी है। वेलकम है। फिलहाल कॉल लगाते हैं सीधे सोनू गौतम जी को, इस बार फर्स्ट आए हुए हैं।

0: भाई बहुत बहुत वेलकम है आपका सोनू गौतम जी, फाइनली नंबर लग ही गया।
1: थैंक यू भाई, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप अपने बताएं, कैसे हाल चाल है आपके?
0: बहुत ही बढ़िया है। ये बताइए कि जब वो यानी कि ग्रुप में होता है तो एक नंबर में भेज देते हैं, यहाँ पे काहे पीछा जाते हैं?
1: पता नहीं सर क्यों पीछे रह रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा। और ग्रुप में तो फिर कल कल आएगा ग्रुप वाला प्रोग्राम, कल देखना।
0: जी जी बिल्कुल, मतलब वहां तो कल मैं देखूंगा ही, बिल्कुल देखूंगा। नहीं देखने का यानी सवाल ही पता नहीं है कि मैं नहीं देखूंगा, है कि नहीं?
1: हाँ ये तो है सर।
0: फिलहाल बताइए आप अंतर के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: मिलते मिलते हंसी वादियों में।
0: ठीक है, और ये क्या स्टोरी चल रहा है भाई, मुझे थोड़ा सा कोई बताएगा इम ताहिर जी का?
1: जी ये मेरे

0: समझ में नहीं आ रही, क्या स्टोरी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा।
1: आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, हमारे वो तो बता रहे थे, यानी कि सुनील कुमार जी,
0: सुनील कुमार जी बता रहे थे, पता नहीं क्या, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा।
1: अच्छा ठीक है, फिलहाल हम अब तो हमको लगता है उन्हीं से पूछना पड़ेगा। फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए आप।
0: ओके जी, उन्हीं से पूछ लेना।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। इस बार मेरे पास मैसेज पहुंचा है अशोक देशमुख जी का, गजेंद्र सरकार जी का, ज्योति खटवड़े जी का, सुनील कुमार जी का, संजय सानी जी का, सुनीता गोप जी का, अजय कुछ जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, और यानी अजय भगत जी का, मिशाल अंगद जी का, सर्वेश भगत जी का, और यानी पिकुरा जी का, बागेश्वर निशा जी का, और परवेज अहमद जी का, और जय इंद्रवंशिका जी का, आफ्ताब आलम जी का, निशांत रायबोले जी का, विष्णु जी का, और परवेश कुमार जी का, शिल्पा यानी शिल्पा बेन जी का, अनिल कुमार जी का। बहुत है भाई, फिलहाल कॉल लगाते हैं सीधे। अशोक देशमुख जी आपका बहुत बहुत वेलकम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
1: बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब नंबर लगा
0: जी। तो जब नंबर लगा तभी कॉल जाएगा, है कि नहीं?
1: जी जी जी जी,
0: उससे
1: नंबर लगेगा तो ही कॉल लगेगा,
0: तभी कॉल जाएगा जी। नंबर नहीं लगा तो कॉल नहीं जाएगा। हाँ, स्पेशल कॉल जा सकता है, बिल्कुल।
1: हाँ, फिर बाद में आता है, फिर बराबर।
0: हाँ, स्पेशल कॉल आएगा अगर आपका, जब नंबर आप यहाँ पे लगातार खेल रहे हैं और इनकेस आपका नंबर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं होती है, स्पेशल कॉल जरूर किया जाएगा।
1: स्पेशल कॉल आता है जी जी जी।
0: ये चीजें हैं। तो बताइए, वो कौन सा गाना चुना है आपने अंतरा से?
1: दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया।
0: ओके जी, तो सुनवा रहा हूँ आपके,
1: ये गाना सुनना है,
0: एंजॉय कीजिए। 8:30 बजे होगा,
1: धन्यवाद सर।
0: इसका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा 8:30 बजे। ओके
1: ठीक है, ठीक,
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है गजानंद सोलोकार जी का, सोनू गौतम जी का, सुनील कुमार जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, जय कुछ जी का, ज्योति खरवर जी का, सुनीता गोप जी का, आरजे वंशिका जी का, पूजा भास्कर जी का, और यानी विपिन त्यागी जी का, परवेज अहमद जी का, और यानी कमल शंकर जी का, सर्वेश भगा जी का, एम ताहिर जी का। एम ताहिर जी थोड़ा सा और कोशिश कीजिए ना एक नंबर में आने के लिए। अफ्ताब आलम जी का, अशोक देशमुख जी का, एंड अनिल कुमार जी का, बागेश्वर निशा जी का, और ये निशांत रायबोले जी, अजय भगा जी, और मनीषा शर्मा जी, और शिल्पा बहन जी, और काजल झक्का जी, और विष्णु चंद्र जी। माय गॉड, बहुत से दोस्तों के नाम है जी। फिलहाल कॉल लगाते हैं जल्दी से गजानंद।

0: बहुत बहुत वेलकम है। नमस्कार, कैसे हैं?
1: धन्यवाद धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया हो सर जी, और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: धन्यवाद देते हैं सुनने के लिए।
1: प्रोग्राम का आनंद ले रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है।
0: धन्यवाद, आनंद लेते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।
1: दीवाना बना दे,
0: ओके,
1: अमन सर जी के साथ।
0: तो फिलहाल बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुना आपने?
1: ओ राधा,
0: अच्छा,
1: तेरे बिना तेरा शाम है आधा।
0: सुनवा दिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पर मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंच चुका है हमारे एम ताहिर जी का, बहुत बहुत वेलकम है। और मैं बात करना चाहता भी था इनसे कि भाई क्या बात है, थोड़ा मैं भी तो सुनूं। उसके बाद हमारे यानी कि सुनील कुमार जी हैं, सोनू गौतम जी हैं, ज्योति खटवारे जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, गजानन सरोकार जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, अजय भगत जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, और अनिल कुमार जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं, धनेश मिश्रा जी हैं, रवि महाराज जी, अफ्ताब आलम जी हैं, और कमल शंकर जी, परवेज अहमद जी हैं, निशांत अबोले जी हैं, बागेश्वर निषाद जी हैं, और कृष्ण चंद्र जी हैं, शिल्पा बहन जी हैं, और भी दोस्त तो है नहीं है फिलहाल। कॉल लगाते सीधे हम ताहिर जी को। वालेकुम अस्सलाम। और भाई हम तो इंतजार कर रहे थे भाई, आप एक नंबर में मैसेज भेज ही नहीं पा रहे थे, आप बहुत देर ये पीछे हो जा रहे थे। मैंने आपसे कहा भी कि रेडियो को स्टॉप करके फिर से प्ले कीजिएगा ताकि आपका मैंने सही से सुनाई दे, फिर भी आप नहीं कर पा रहे थे।
1: नहीं सर, हाँ थोड़ी सी कॉल आ गई थी बीच में सर घर से, इस कारण से ये हो रहा था पीछे।
0: हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ,
1: आपने याद दिलाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजारी सर।
0: आप पीछे क्यों जा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि आपका मैसेज सबसे लास्ट में आ रहा था, तो जब लास्ट में आएगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको।
1: जी सर, रीजन यही था जो सर आपने मुझको अवगत करा दिया था इस बात से।
0: हाँ तो मैंने आपको मैसेज भी किया कि, और मैंने बोला भी था ऑन एयर कि आप अपने मतलब रेडियो को स्टेप करके एक बार प्ले कीजिए ताकि ऑन एयर मतलब जैसे मैं बोलूँ तो वो आपको सुनाई दे सके, क्योंकि आप बहुत पीछे जा रहे थे।
1: सर,
0: मैं यहाँ पे
1: सर, उसके मुझे फायदा मिला।
0: एक्चुअली क्या हुआ कि मैं यहाँ पे फोन लगा दे रहा हूँ और तब आपका मैसेज आ रहा है कि कागज कलम दबाता है यानी कि आपका बहुत पीछे जा रहा था, बहुत ज्यादा, बहुत लेट से मैसेज आ रहा था आपका।
1: जी सर
0: जी, तो बताइए,
1: सही दिशा पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर
0: जी, यानी वेलकम है। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, क्या क्या ये मतलब?
1: नहीं सर, ये तो एक बात तो बता दीजिए सर, अगर यार दोस्त अगर फ्रेंड इस तरह की मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेंगे?
0: कौन
1: सर
0: करेगा?
1: वो सुनील भाई की, गौतम भाई की, वो सुनील सोनू गौतम जी की, हमारे ये बहुत बहुत ज्यादा दिल के करीब है दोस्त लोग ये।
0: अच्छा, अच्छा,
1: तो इनकी आदत है मजाक करने की सर, कुछ नहीं सर,
0: ये मजाक चल रहा है, मुझे लगा कुछ यानी सीरियस मामला हो गया।
1: नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, प्यार तो बस एक चीज से हुआ है सर, हॉट स्टार से, और आपकी पेशकश से, आप लोगों की, उसमें आप हो या वंशिका जी हुई, आकांक्षा जी हुई, सोनी जी हुई, आप लोगों की पेशकश से हुआ है सर प्यार, ऐसा कुछ नहीं है सर।
0: थैंक यू सो मच, बस ये तो आपका बड़प्पन है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल।
1: नहीं बड़प्पन नहीं सर, आपकी जो आपके अंदर काबिलियत है उसको सलाम कर रहा हूँ मैं सर।
0: धन्यवाद। वैसे कहाँ कहाँ से लाते हैं ये सब यानी लव्स, ये सब शब्द, ये सब वर्ड्स, मतलब क्या कहें, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए।
1: सर देखो, शर्मिंदा मत करो
0: नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कोई शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ।
1: नहीं सर, खुशनसीबी है आपसे जो बात हो रही है, मेरे लिए सबसे बड़ी है।
0: चलिए फिलहाल बता दीजिए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: नहीं, आपने जो गाना भेजा वो बताना पड़ेगा।
1: अच्छा, जो मैंने भेजा,
0: हाँ हाँ वो बताना पड़ेगा।
1: एक मैं सर आपकी बातों में इतना खो गया कि मैं वो भी भूल गया।
0: अच्छा, ऐसा ऐसा भी है क्या?
1: जस्ट मिनट सर,
0: कोई बात नहीं
1: सर, सांसों को जरूरत
0: जी, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया,
1: शुक्रिया सर।

और इस गाने के बाद स्टार्ट होगा सेकंड राउंड, क्योंकि अब आप लोग इसका गाने का अंतरा मत भेजिएगा, मैं सेकंड राउंड स्टार्ट करने वाला हूँ।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूडी चॉइस और कीजिए दिए गए मूड पर आधारित गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 9135 84 12 32।
2: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे। और फिलहाल यहाँ से शुरू करता हूँ मैं सेकंड राउंड, तो एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद सवाल करने। और आज के अंतरा का जो इन सेकंड पार्ट है उसमें जितने भी गाने होंगे वो होंगे दुपट्टा, ओढ़नी और चुनरी पर, तो तैयार हो जाएं।

0: रहा सबसे पहला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, पौआ के तोहरी पायल जब छन से छनक जाता, लागे कि कौनो भौरा बगिया में गुनगुनाता, मुस्कान तोहरी दिल के धड़कन बढ़ा रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

0: बहुत बहुत वेलकम बा, और आपको बधाई भी हो क्योंकि आज आपकी फर्स्ट विनर बनी है, आपका कोटा फुल होता है।
1: थैंक यू। हाँ मुझे पता है
0: जी। और जो यानी विनर होता है वो कोई भी गाना सुन सकता है। बिल्कुल।
1: हाँ तो लिंक शेयर किया है मुझे वही गाना।
0: ठीक है, गाना मैं यही सुनाऊंगा, लेकिन आप पहले जवाब बता दीजिए।
1: ओढ़नी के रंग पियर।
0: हाँ बिल्कुल सही जवाब था।
1: तो गाना आज हम ओढ़नी पियर है ओढ़ले वाली।
0: अच्छा जी, क्या बात बा। अच्छा, तो हमारी गाना सुनने का मन करता है ओढ़नी के रंग पियर।
1: तो स्टार्ट यही से करे के चाहिए। तो और आज कैसे कैसे भोजपुरी गाना आ गया अंतरा मस्ती में?
0: वो मतलब एक तो जानबूझ के दिए थे ना, इसीलिए
1: लोग भोजपुरी गाना ना सुने लाई थे ना बता पाओ।
0: क्योंकि हमको इसी से मतलब उसी गाने का सवाल करना था, इसीलिए वो गाना प्ले नहीं किए। फिलहाल आपका गाना प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।
1: ओके,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: मुझे लगा कि बीच में भाई गाते रहेंगे, क्या हम सवाल कब करेंगे? फिलहाल सवाल
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। नैना शराबी, सूरत गुलाबी, तेवर ये तेरे लगते लुटेरे, है तेरी बातें मेरी जैसी तीखी, तीखी तीखी तीखी तीखी, लगती है फिर भी गुड़ जैसी मीठी, मीठी मीठी मीठी मीठी मीठी, अरमान कुवारे तुझ पे हाँ वारे।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

0: पहचाने, सिर्फ अंचल कुमार जी पहचाने, इनको कॉल लगाते हैं हम। और मुझे मालूम था कि आज इस गाने को कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन आपने पहचान लिया, आपको बहुत बहुत बधाई। और सिर्फ आपने ही पहचाना है और किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है, बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई जवाब बता दीजिए क्या है। हेलो, झटका मारे गोली मारे तेरा दुपट्टा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। क्या सुनना पसंद करेंगे बता दीजिए।
1: भोजपुरी गाना सुना दीजिए।
0: तो बता दीजिए,
1: फिल्म आखिरी रास्ता का, अल्लाह हमके प्यार प्यार हो गए।
0: अल्लाह हमके प्यार प्यार हो गए है ना
1: जी सर।
0: गाना तो बहुत अच्छा है
1: जी सर, आप रेडियो स्टार में ही सुनते हैं सर ये सब गाना।
0: अच्छा जी, तो सुना दिया, एंजॉय कीजिए।

0: वेट वेट वेट, पहले मैं सवाल कर लेता हूँ भाई, ना तो फिर मैं भूल जाऊंगा। और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, चिकने चिकने बदन से तेरे, सर सर चुनरी सर के, ऐसा लगे कि बिन बादल अंबर पे बिजली कड़के, चुनरी चुनरी चुनरी चुनरी, जी करता है ये बिजली में तुझ पे आज गिराऊं, तुझको भर लूं बाहों में ये चुनरी तुझे उड़ाऊं, बढ़ता ही जाए दर्द हो ना खत्म, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना।

वेलकम बैक। और सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है जीनत सिद्दीकी जी का। ओके, और जीनत सिद्दीकी जी के बाद इन महक जी हैं, आरजे सोनी जी भी हैं, और यानी कि सोनू गौतम जी हैं, दीपक जी हैं, सुनील कुमार जी, मिशा लंगा जी हैं, अचल कुमार जी हैं, और इन विष्णु चंद्र जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, ज्योति खरवड़ जी, सुनीता गोपी, निशा सैफुल जी, बागेश्वर निशा जी हैं, और पूजा भास्कर जी, राहुल जी हैं, एक साहब और भी है, नाम तो मुझे नहीं पता, राम कुमार ठाकुर जी। ओके, और बीरबल बघेल जी है, जितेंद्र जी है, गोपाल बरदार जी, अर्जुन रत्ना जी है, शिल्पा बेन जी है, राधा कृष्ण गोप जी, मतलब के बहुत ज्यादा जवाब सही सही है। फिलहाल कॉल लगाते हैं।

0: के प्यार। बहुत बहुत वेलकम है जीरज जी। हेलो
1: जी सर, शुक्रिया।
0: और कैसी हैं आप
1: जी? अच्छी हैं, आप बताइए तो कैसी हैं?
0: हफ्ते में एक दिन दिखाई देती हैं, सिर्फ आज के दिन, सैटरडे के दिन। बाकी दिन गायब रहती हैं। बिल्कुल
1: गायब नहीं रहते हैं सर, थोड़ा काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, आज के टाइम टाइम मुझे मिलता है तो जुड़ जाते हैं आपके फोन।
0: चलिए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सच में आपने इस सवाल का सबसे पहले जवाब दिया है, तो जवाब बता दीजिए।
1: आजाना छुले मेरी चुनरी सुना।
0: गाना कौन सा सुनना चाहेंगे ये भी बता दीजिए।
1: यही वाला सुना दीजिए।
0: अच्छा जी, यही सुनना है।
1: सर आपने बोला कि चुनरी पर सुन सकते, इसकी वजह से नहीं बोला है।
0: कोई भी सुन सकती है, नो प्रॉब्लम।
1: अच्छा, तो सर मुझे बोला सॉन्ग सुना दीजिए।
0: हम बता दीजिए।
1: मेरी सवालों का जवाब दो नाम।
0: अच्छा अच्छा,
1: सलमान खान का गाना।
0: अच्छा, मेरे रंग में रंगने वाली है ना।
1: जी सर।
0: ओके ठीक है, मैं ये इसी गाने को सुनाया था। एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया, धन्यवाद।

0: सवाल ये सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। धड़कनों में क्यों हलचल है, दर्द सा कोई पल पल है, जादू कोई छलका सा है, हमको नशा हल्का सा है। इन नजारों में खोने दो, अपनी बाहों में सोने दो, यूं ना करो दीवानापन, ना जाने क्यों डरता है मन।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो मनीषा शर्मा जी का पहुंचा हुआ है, और सोनू गौतम जी हैं, मिशालंगा जी हैं, अंचल कुमार जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, और हमारे ये यानी कि जीना सिद्दीकी जी हैं, बीरबल बघेल जी भी हैं, और ज्योति खड़बड़े जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, और उसके बाद से बहुत से दोस्त भी हैं। लेकिन फिलहाल कॉल लगाते हैं मनीषा शर्मा जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है मनीषा शर्मा जी, और आपने मैंने फौरन पहचान लिया है, क्या बात है।
1: धन्यवाद अमन जी।
0: जवाब बता दीजिए प्लीज।
1: जवाब है दुपट्टा सरक रहा है।
0: हाँ बिल्कुल सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: और मेरा सॉन्ग है रात की हथेली पर चांद जगमगाता है।
0: रात की हथेली पर चांद जगमगाता है।
1: जी धन्यवाद।
2: उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
3: तो चांद को ही देखे ना।
2: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: हाल ये सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। तुमसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोली सनम, मेरे प्यारी सनम, दीवानी सनम, अनजानी सनम। बोली मेरा कंगना धीरे धीरे, बोली मेरी पायल धीरे धीरे।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
3: कहां से आई हो इस नगर को जाओगी।
4: हाय हाय क्या बात।

मेरे पास सबसे पहले मैसेज आया हुआ है हमारे बागेश्वर निषाद जी का, सोनू गौतम जी का, अंचल कुमार जी का, सुनील कुमार जी का, यानी बीरबल बघेल जी का, पूजा भास्कर जी का, अजय कुछ जी का, ज्योति खरवर जी का, दीपक कुमार जी गायकवाड़ जी का, सुनील तगोप जी का, रोहित सोनी जी का, और यानी कि विष्णु चंद्र जी का, जिनत जी का, महक जी का, अच्छा ओके, और यानी गजानंद सरोकार जी का, और कविता जी का, साथ साथ यानी शिल्पा बेन जी का, राहुल जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, और एक साहब और भी है भाई, क्या नाम है, राज, ओके वेलकम है आपका भी। कॉल लगाते हैं सीधे हम बागेश्वर निषाद जी को।

0: बागेश्वर निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में। कैसे हैं आप? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू है।
0: कोई बात नहीं, फिलहाल आप इसका जवाब बता दीजिए और गाने का बोल बता दीजिए।
1: तेरी चुनरिया दिल ले गई।
0: ओके, और क्या गाना सुनना पसंद करेंगे ये भी बता दीजिए।
1: गाना सर सुनेंगे आके तेरी बाहों में, हर काम लगे सिंदूर।
0: आके तेरी बाहों में, वाह क्या गाना लाए, सच में बहुत प्यारा गाना। सुनवा दिया।
1: थैंक यू सर।

0: और आज रात 10 बजे जरूर सुने आरजे आकांक्षा जी का बहारे गजल। और इन गजलों का डिमांड कर सकते हैं 9:30 बजे से ओपन होगा। फिलहाल ये रहा सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: तन्हा तन्हा था ये दिल, खोया खोया था ये दिल, बेचैनी का आलम था, सूना मन का आंगन था। जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले, जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले। मैंने भी ये तय किया है, आएगी तेरी डोली मेरे ही अंगना।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना

पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे सबसे पहले यानी मैसेज पहुंचा हुआ है सुनीता गोप जी का, ज्योति खटवटे जी का और हमारे सोनू गौतम जी का, बीरबल नहीं इनका गलत है और इनका भी गलत है, इनका भी गलत है और इनका भी गलत है और जीना जी का सही है बिल्कुल। तो फिलहाल सीधे कॉल लगाएंगे सुनीता गोप जी को।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत वेलकम है सुनीता गोप जी, और आपके लिए स्पेशली मैंने नंबर पे कॉल लगाया है।
0: जी सर, ये मैं नहीं लगता है व्हाट्सएप में, नहीं लगता है यहाँ पर।
1: जी जी,
0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और कैसी हैं आप?
0: ठीक है सर।
1: तो जवाब बता दीजिए।
0: ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
1: बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना पसंद करेंगी?
0: जब तक रहेगा सीने में दिल सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा।
1: और उनको यानी बोलने में यानी कि लाज लग रहा है का?
0: नहीं बोलती है सर, हम उसको बोलते हैं तुम बोलो, नहीं बोलती है।
1: तो ये अच्छी बात नहीं है, उनको बोलिए वो यानी बोले, क्योंकि जब तक नहीं बोलेंगे ना वो मन का भटभटाहट नहीं दूर होगा। उनको बोलना चाहिए। ठीक है, फिलहाल गाना प्ले करता हूँ।
0: जी सर।
1: हाँ, यानी कि एक बार फिर से बताइए तो, यानी कि कौन सा गाना?
0: जब तक रहेगा सीने में दिल से तुम्हें ही चाहूंगा।
1: ओके, मेरा फेवरेट गाना, एंजॉय कीजिए।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: बोले चूड़ी पाई लिया, बोले आजा डोली लेके आजा साजना। हाथों में मेहंदी हो, मांग मेरी सिंदूरी हो, तेरे नाम का किया सिंगार, ये सिंगार मेरी रूप की आई बहार, के दिल पर देसी हो गए।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

और बहुत से जवाब मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहले मेरे पास पहुंचा है जवाब सोनू गौतम जी का, महक जी का, और बीरबल बघेल जी का, अंचल कुमार जी का, ज्योति खरवड़े जी का, राहुल यानी शुभ जी का, और इन विष्णु चंद्र जी का, और सुनील कुमार जी का, एक साहब और भी है यानी कि राम ठाकुर जी और जीनत जी हैं, एक साहब और भी है अभिषेक तेली जी, सॉरी अविनाश तेली जी, और इन पूजा भास्कर जी और मनीषा शर्मा जी हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है भाई सोनू गौतम जी, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप अपने बताएं हाल चाल कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट, झकास, बिंदास, फर्स्ट क्लास, चकाचक, मजे में, गारंटी के साथ हैं।
1: हाँ ये तो है सर।
0: फिलहाल जवाब बता दीजिए भाई, बहुत ऐसे प्रयास हमेशा ये दो नंबर आ रहे हैं, क्या बात है, एक नंबर क्यों नहीं आ रहे?
1: पता नहीं सर, वो सबसे पहले आपने भोजपुरी गाने का म्यूजिक सुनाया था, वो गाना मैं तुरंत समझ गया था, पर मेरे लिखने के लिए जुबान पे नहीं आ रहा था कि ओढ़नी के रंग ये लिखने के लिए नहीं आ रहा था, मैं बहुत सुनता हूँ उस गाने को।
0: कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। फिलहाल बता दीजिए यहाँ पे सब
1: ओढ़नी ओढ़ के नाचूं।
0: हाँ बिल्कुल
1: सही, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं।
0: हाँ सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना है?
1: गाना सुनवा देना आप, तेरी चुनरिया दिल लगी, और किसी को डेडिकेट करना चाहूंगा सर।
0: हाँ
1: ओ आरजे पूनम जी सुन रही है, उनको डेडिकेट रहेगा।
0: अच्छा ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।

बात है। तो आरजे पूनम जी सुने तो कम से कम एक मैसेज तो कर सकती है ना, पता नहीं कभी मैसेज तो करती नहीं है, लेकिन वेलकम।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। कुछ ठंडा पी लो, मूड नहीं है। दही बड़े लो, मूड नहीं है। कुल्फी खा लो, बहुत खा चुके। पान खा लो, बहुत खा चुके, बहुत खा चुके, बहुत खा चुके। अजी रसमलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए। पहले जूते खाएंगे क्या, आपकी मर्जी। ना दी तौबा, ना दी तौबा, ना दी तौबा। किसी बेतुके शायर की बेसुरी कव्वालियों।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

और मेरे पास इस बार सबसे पहले मैसेज पहुंचा है वह है यानी कि शिवम जी का। ओके और उसके बाद से है कौन से दोस्त, मैं बता देता हूँ, यानी कि सोनू गौतम जी, ना इनका जवाब यानी गलत है। और उसके बाद महक जी हैं, और यानी दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, जीना सिद्दीकी जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, और राहुल इंसुक जी हैं, ज्योति खड़बड़ जी हैं, नंदलाल यादव जी हैं, एक साहब और जी हैं, क्या नाम है इनका, नाम देखना पड़ेगा, रमेश चौहान जी, ओके, गजानन सुलकार जी हैं, और इनके हमारे मतलब इन विष्णु जी हैं, अजय कुछ जी हैं, और एक साहब क्या नाम है भाई, राम ठाकुर जी हैं, बागेश्वर निषाद जी हैं, और नहीं इनका गलत है, और सुनीता गोप जी हैं, इनका सही है, और एक साहब और भी इनका नाम नहीं पता है मुझे, अंत में नंबर है 83678, राधा कृष्ण गोप जी हैं, और फिलहाल तो इनको मैं कॉल लगाता हूँ। ओके कॉल तो नहीं लग रहा है।

0: फिलहाल ये सवाल सुनिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। लाख छुपाए बैठी थी मैं अपने चांद से चेहरे को, एक पल में ही तोड़ दिया बैरन हवा ने पहरे को। हो तेरे चेहरे का जाना, कुछ ऐसा जादू छा गया, मेरे चांद को देखकर चांद भी शर्मा गया।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: मेरे पास इस बार मैसेज सबसे पहले पहुंचा चुका है। एक बार फिर से सोनू गौतम जी का आया, ये आज यानी कि फर्स्ट मतलब आज यानी कि आज के ये सेकंड इन विनर बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। और उनके बाद से जीना जी हैं, और उसके बाद महक जी हैं, अंचल कुमार जी हैं, रोहित जी हैं, बागेश्वर निषाद जी हैं, एक साहब और भी हैं, अविनाश शैली जी हैं, और गजानंद सुरकार जी हैं, ज्योति खड़वड़ जी हैं, राहुल सुख जी हैं, और इनका क्या नाम है भाई मैं भूल जा रहा हूँ, रमेश यानी कि चौहान जी हैं, और मनीषा शर्मा जी हैं, आमना खान जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, एक साहब और भी हैं। अंत में नंबर है 01766। तो भाई नाम बता दीजिए प्लीज। और ये संजय जी हैं, तो फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं सोनू गौतम जी को।
1: या बिहार में बोलो गांधी मैदान लोगी पटना में
0: जी। आपको बहुत बहुत बधाई आज की विनर बनने के लिए। तो आप कोई भी गाना सुन सकते हैं।
2: थैंक यू आयशा। और मेरे को वो गाना सुनवा देना जो मैं भेज रहा था, पातर पातर वाला।
0: मतलब
2: पातर पातर एक गाना है ना, भोजपुरी गाना है, पातर पातर पिया पलंग पर। तो पिछली बार बिग बॉस में नीलम गिरी गई थी, उन्होंने गाया था घूंघट में घोटाला मूवी का गाना है ये।
0: मतलब अच्छा है ना गाना?
2: अरे बहुत बढ़िया गाना है।
0: ओके ठीक है, तो मैं जरूर
2: सुनवाऊंगा। अगर इसको नहीं सुनवाना चाहते हैं तो जो लेक्चर भेजा मैंने वो सुनवा दो, हटाओ उसको हटाओ।
0: मतलब देखिए, हमें हमने क्योंकि इस गाने को मैंने नहीं सुना है। ठीक है
2: ठीक ठीक, तो मैं सुनवा उसको, आप कभी बाद में सुन लेना, फिर फरमाइश कर देंगे उसकी। आप ये वाला सुनवा देना, कम से कम इतना कहा होता।
0: ओके ओके चलिए, मैं आपको इस गाने को
2: और एक बार फिर ये पूनम जी को डेडिकेट रहेगा।
0: अच्छा कम से कम इतना कहा होता भाई, अब बोल ही दीजिए उनको, इसी लगले बोल दीजिए। ठीक है
2: बोल दिया मैंने।

अभी 9:31 हो रहा है हमारे स्टूडियो के घड़ी में, और मैं अभी ओपन करने वाला हूँ आरजे अखंड जी के शो के लिए। वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं आज ये निक्की गजलों की।

0: रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: पहली मुलाकात में लड़की नहीं खुलती, हर अजनबी पे दिल की ये खिड़की नहीं खुलती। दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता, आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना बजाते।

वेलकम बैक। इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है यहाँ पे सुनील कुमार जी का, बांका बिहार वाले का, और महक जी का, अंचल कुमार जी का, जीना जी का, और अविनाश इंतेली जी का, दीपक जी का, और क्या नाम है इनका, रमेश चौहान जी का, बागेश्वर निशा जी का, और अरुण विष्णु जी का, अजय कुश जी का, मनीषा शर्मा जी का, राहुल पासी जी का, और संजय पासी जी का, और कविता जी का, और शिल्पा बेन जी का। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम सुनील कुमार जी को।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील कुमार जी, बांके बिहार वाले
1: भैया। नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं भाई?
1: जी जी बहुत अच्छे हैं। अभी अपने आवास की तरफ निकले थे, रास्ते में ऐसे सुनते हुए जा रहे थे आप।
0: अच्छा अच्छा, और रास्ते में ही आपने धमाका मचा दिया,
1: जवाब दिया। जी जी जी जी जी,
0: तो बता दीजिए।
1: पहले तो सर जवाब तो बता ही देंगे। पहले तो हमारे कुछ दोस्त आपसे आज ही जुड़े हैं, एक दो पूनम जी हैं, आरजे पूनम जी और अविनाश तेली जी, और एक दो सदस्य और जुड़े हैं नए, तो उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा रेडियो हॉटस्टार पे।
0: तो मैं बता दूं कि आरजे पूनम जी यहाँ के आज के नहीं है, जब से रेडियो हॉटस्टार ओपन हुआ था वो यानी कि तब से सुन रही थी। हाँ बीच में छोड़ दिए, वो अलग बात है, लेकिन आज वो फिर आई है, तो उनका बहुत बहुत मैं वेलकम करना चाहूंगा। जी आगे बताइए।
1: जी सर, मैंने तो सर आज ही सुना ना उनको। अच्छा, इसीलिए मैं स्वागत करना चाह रहा था।
0: कोई बात नहीं है, बताइए।
1: तो ये आज जी जी, और आपका सवाल का जवाब है सर कि लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: जी जी, अब नाम में पूछ लीजिए आप भी एकदम बिल्कुल।
1: नाम तो पूछ लिए है ना जी, वो उनको डेडिकेट। और सर आप बोल रहे थे ना सस्पेंस, ये सस्पेंस था। और सुबह से एम ताहिर जी हमसे मुंह फुलाए बैठे थे।
0: अच्छा।
1: तो हमने बोला आज आपको परेशान करेंगे रेडियो स्टार पे, ने तो आइए।
0: अच्छा।
1: तो उनको सरप्राइज देने के लिए जो है ना, ये हमारी जो है मनगढ़ंत कहानी हम लोगों ने लिखी थी और बनाई थी सर।
0: अच्छा जी, ओ समझ गए, कोई बात नहीं। फिलहाल तो बताइए अब।
1: जी जी जी,
0: अब आज इसका ये आप गाना कौन सा मैंने सुनना चाहेंगे?
1: गाना वो फिल्म है सर, क्या नाम है, जुमा चुमा दे दे,
0: हम
1: फिल्म का गाना है। जी
0: सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए
1: जी। धन्यवाद सर।
0: वेलकम जी।

0: और आज का आखिरी सवाल करने वाला हूँ मैं, सब तैयार रहिएगा। अभी कर ही लेता हूँ।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। तेरी चाल है हिरनी जैसी, लचके कमर मोरनी जैसी, तेरी जुल्फें घटा सावन की, सूरत शर्मीली दुल्हन की, तेरी जुल्फें घटा सावन की, सूरत शर्मीली दुल्हन की, ओ झील सी आंखों वाली, हाय फूल से गालों वाली।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है किनका, क्या नाम है इनका, रमेश चौहान जी का। रमेश चौहान जी के बाद जीना सिद्दीकी जी हैं, अंचल कुमार जी हैं, और एक अविनाश इतली जी हैं, महक जी हैं, इनका जन्म सलोकार जी हैं, अजय कुछ जी हैं, बागेश्वर निषाद जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, ब्रजेश कुमार जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, और यानी कि विष्णु जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, सुनीता गोप जी हैं। सीधे कॉल लगाते हैं इनको। भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेलकम है।
1: सर जी मुझे एक भोजपुरी गाना सुना दीजिए आपकी तरफ से, कोई भी
0: भोजपुरी गाना सुनिएगा।
1: जी सर।
0: ओके तो हम तो ये सुनवाएंगे, एक करेजा कहाँ याद बढ़ू।
1: ओके सर। ओके
0: ओके, लेकिन पहले जवाब बता दीजिए।
1: हाँ जाना बुक जाना सर, ऐसा पूरा याद नहीं आ रहा।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आपने सही जवाब बताया। फिलहाल गाना सुना रहे, इंजॉय कीजिए।

0: भाई इन विष्णु जी बहुत बहुत बधाई हो, आज के स्पेशल कॉल में स्वागत है आपका, कैसे हैं
1: जी? नमस्कार, ठीक हैं हम।
0: आप नमस्कार, और बताइए आज क्या सुनना है? आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना है एक, सारे शिकवे के लिए भुला के दो दिन में तोड़ेंगे कसम खा के।
0: ओहो, सारे शिकवे सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: सर्वेश भागा जी, बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, थैंक यू सर।
0: तो आज क्या सुनिएगा?
1: उसने बड़े अंदाज से लहराया, लहरा के दुपट्टा वाला गाना।
0: अच्छा,
1: है
0: तो शुरुआत में एंजॉय कीजिए।

और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यानी कि कल आतवार को होगा इन मूडी चॉइस, और मूडी चॉइस में कल आप यानी कि स्कूल और यानी कि कॉलेज वाले गाने भेज सकते हैं, यानी कि ऐसे गाने जो यानी कि मतलब स्कूल में गाने वहां पे गाए गए हों यानी कि कॉलेज में गाए गए हों, जैसे कि यानी कि कोई कॉलेज की लड़की है, मेरी कॉलेज की लड़की हो वगैरह वगैरह, मतलब समझ सकते हैं।

0: राधा कृष्ण गोप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज क्या सुनिएगा स्पेशल कॉल में जी, बताइए।
1: गाना हम सुनेंगे, हम तुम्हारे हैं,
0: हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। ओके,
1: हेलो।
0: हाँ जी, ओके, मैं सुनवा रहा हूँ आपके लिए गाना, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। ओके,

0: जी अभी सर द बर्निंग ट्रेन फिल्म का नाम है और गाने के बोल हैं, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू सबसे महान, तू बख्श कर सभी का है, तू सभी तेरे, ये गाना है।
1: ओके जी, तो चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना, एंजॉय कीजिए।
0: एक छोटी सी बात बोल दूं और?
1: जी जी जी,
0: आज दिल का काम नहीं, आज दिमाग का काम है, दिमाग तेज हो उसका ही जवाब आगे रहता है। बस सर सुना दीजिए गाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दिल तो एक कोने में बैठे रहता है आज।
1: ओके ओके,
0: ठीक है।

0: दीपक कुमार गायकवाड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल कॉल पर। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया अमन सर जी।
0: तो
1: बस आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। जब आप लेट दे पा रहा हूँ आज मैं।
0: अभी क्या सुनेगा ये बता दीजिए।

और जाते जाते चुकी अब तो मेरा समय हो चुका है, एक गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ आप सभी लेके अब सभी दोस्तों के लिए, और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 या 6:30 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

0: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलोसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

लौट आए